0: ऐसे कौन यिंग निंग कंटू यिंग निंग जी चेसोंग आ न्यूज़ चू
1: चुबरे मुझे कैसे तुम चोक समझे को ये निंग नुम के कोशिश चोक सुगे हालाम निवा क्या ला निवा कब कैसे नम नी रवि तम चुंग दिने बांग चुंग निंग से संज चू कैसे नम नी जी सुनी तम चुंग उन्हें ने दे कैसे तुम जा मा चौ मनु ऋषि कम ने दे ते जी जी दांची मुझे वाची क्या ने कैसे जोंग बे ला पुंग बुझे
0: ठीक जी ये सिंग मारे
2: चुबरे मुझे पुंग पोजम चोक सु दें जी शुसम या दाखला सोबे कैसे मांग दाशी都归大家等等，来，家人们呢？
0: 开的，怎么这么急？
3: 怎么这么急？
4: 小布，别不这么急，等着叔叔他。
2: 干叔叔，干叔
5: 叔。快去接军队吧！
6: 啊！啊！进去，进去。
2: 别不这么急，这么空，吃不算了。
6: 陆七郎，
7: 老余，
6: 他去空挖点秩序去，虽然强盗去证实。
7: 干西叔，
6: 那怎么瞧？
0: 对不起，
6: 不对，天狼弟。
0: 对不起，可我眼睛半边，对不起你，你吃破了呢。
6: 不对，怎么了不起？叫我呀，跪下呢。
8: 金不团中去，团员给古风提三点去四支火，沿着烈火卷的夏天，两岸去汤泉坡，明儿短信，感受雨季曲速撇不淌。在长白街前长松堂，陈氏庄园，金不团员给古东了三点去通州道会，古路安心随排去了。